0: 进一步提升处理事故时的指挥控制与行动效率。演习模拟超强台风袭港，来自行动、行政和支援单位的民安队协助拯救行动。测试及评估部队在指挥调配、抢救技术、通讯联络、灾民照顾及物流支援等方面的效率与效能。演习也设有多项突发事件场景，包括山林拯救、紧急救援等。在演习中又运用多项救援科技，包括无人机和机械犬，并首次使用电动尾机和橡皮艇和自吸式呼吸器。天气方面，一道广阔低压槽正为广东沿岸及南海北部带来骤雨及雷暴。本港地区今晚及明天的天气预测，多云有骤雨及狂风雷暴，明天雨势有时颇大，气温介乎25至29度，吹和缓南至西南风，风势时而清静。展望星期二初时雨势仍然颇大，即有狂风雷暴，稍后骤雨逐渐减少，随后一两天天色较为明朗。现时路德室外气温29度，相对湿度87%。向电台新闻报道完毕。
1: 听 AM 621，
2: 听生活，听精彩。
1: 听香港电台普通话台
2: AM 621，香港电台普通话台，谱出生活精彩。
3: 狗狗永远是你的忠实伙伴，最懂你的需要，时刻守护在你身边。作为负责任的主人，我们要照顾它一生，保它健康安全。在狗狗满5个月大，带它去注射狂犬病疫苗并领取狗牌，这是为它好，也保障大家。记得每3年为它接种疫苗并续领牌照，否则会被罚款。接种疫苗，续领牌照，做个尽责主人。
4: 衣食住行样样行，丰富资讯用耳听。
5: 推广学童运动或者推广全民健身呢，遇到困难嘅，佢有3句说话，讲起嚟重要，做起嚟次要，忘起嚟不要。咁所以真系我哋要讲行动啦，真系要行动，因为健康嘅身体咧，并非与生俱来。
2: 就在星期一至五上午10点到12点，
4: 主持杨子金、麦尚中，
2: 新紫金广场，一本听得到的充实新星生活杂志。
6: 由而家到晚上11点，系社区参与广播时段。节目由参与 CIBS 社区参与广播服务的社区团体或人士制作。
7: 从现在到晚上11点是社区参与广播时段，节目由参与 CIBS 社区参与广播服务的社区团体或人士制作。
8: From now to 11 p.m., you'll be listening to programs made by community producers from the CIBS Community Involvement Broadcasting Service.
9: 하므로 समाजको हर छोरीहरुमा समर्पित हङकङमा रहेका अल्पसंख्यक समुदायका छोरीहरुको अनेकौं आभासहरु समेटिएको एउटा मीठो रेडियो कार्यक्रम हाम्रा छोरीहरु Our Daughters 2.0, जहाँ हामी समेट्ने छौं वहाँहरूको फरक फरक पृष्ठभूमिमा बाँच्नु भएका अनुभवहरू, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पत्रकारिता, उद्यम, खेलकुददेखि आजको आधुनिक आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स सम्मको बृहत योगदान दिनुभएका प्रेरणादायी 13 कथाहरू सुन्नेछौं। रेडियो कार्यक्रम हाम्रा छोरीहरू आवर डॉटर्स 2.0 यस कार्यक्रमको उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याइरहेका महिलाहरूको प्रेरणादायी कथा मार्फत समाजमा सकारात्मक सोच र समानताको सन्देश दिनु हो।
10: Dedicated to every daughter of our ethnically diverse community, a radio program celebrating the voices and journeys of daughters from Hong Kong's ethnically diverse community. Hamra Choriharu, Our Daughters 2.0. Hamra Choriharu, Our Daughters 2.0 aims to inspire positivity and promote equality in society by sharing the powerful stories of women who are shaping a better future for all.